सुधन मघावन श्री राघवेन्द्र भवता तव सुप्रभातम् श्री कृष्ण देव नृपति सकलं स्वराज्यम् यस्मै समप्यमलय